0: गोर्खा रेडियो हो, सैन्य समुदाय मा
1: लाइन भरी
0: ऑन एयर
1: एप मा
0: अनि स्मार्ट स्पीकर मा भन्नुहोस्
2: प्ले बीएफबीएस
1: यू बीएफबीएस गोर्खा रेडियो हो।